0: नेपाली कांग्रेस सेन्जाको अनुरोध।
1: नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता, नेपाल सरकारका पूर्व उप प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस सेन्जाका पूर्व सभापति श्रद्धेय नेता गोपालमान श्रेष्ठको स्वर्गारोहणको 45 औं पुण्यतिथिको अवसरमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सभापति माननीय गगन कुमार थापाज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा आयोजित शोक सभा कार्यक्रममा सम्बन्धित सबैमा सहभागिताको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ।
0: मिति यही भदौ 25 गते,
1: समय बिहान 11 बजे,
0: स्थान सिटी हल पुतली बजार 1, सेङ्जा।
1: अनुरोधक नेपाली कांग्रेस सेङ्जा।